0: Right. Happy birthday to Amitabh Bachchan. It's his birthday today, born on this day in 1942. 14 hours, 48. Let's hear from his own voice.
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

राम राम रन करकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामे रमेति रमे मनोहरा सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वर रामाय अवश्ये भगवन् देवास्तानि चास्ति तुर्भुवा यावत् पूजा करिष्यामि तावतुं सनिरो भव रमणं सुशोभनं दिव्यं सर्वशोक्याकरं शुभम् आसनं चामया दत्तं गृहानं परमेश प्रेम से बोलो मर्या पुरुषोत्तम श्री राजा राम भगवान की

वो कम पंचम सन्न माते कत्यायनी चारनमा सप्तमं काल रात्रि महागौरी तकाश्बकम नवमं सिद्धि रात्रि

सुते मधुकैतव विनमासि वरदा सुखदे नम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो दयि मरिया।

स्वस्ति नमः स्वस्ति नमो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं।

तावतं सनिरो भवा रमणं सुशोभनं दिव्यं सर्वशोक्याकरं शुभम् आसनं चामयादत्तं ग्रीहानं परमेश्वरि प्रेम से बोलो श्री दुर्गा देवी आदि शक्ति माता की।